0: मेरो लागि मायुका लागि छ सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्तक जरुरी सूचना जुमो पेला खेमरिदे गरम अगोतिरी जेउ पेला सोनो फोनी कता अचुदुरी जेउ आउ पेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना पाए आउ ये गिने प्राकृतिक सम्पदा र सखेत ज सखेम नाले वातावरण मिले ने ल खेपा असर किने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सोनो नाखार नामे ल भे लागिने सज जिमी गिमी लापरवाही सोनो चासो खेलगेमा दुख हिन्दे को ठेल नेला की नाते जन धने ने खेता छेती ताऊ जुओ होकाई
1: गेचो छानेला बन्न नेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले चाउसो ख्याल गिरुए
0: बन जंगल सर मेरा आयुरी बाली एनेल एने ओ सथानेला ली उसोतर पोतर राले पार जगे रहते ही
1: सलाई लाइटर श्यावला ले सचांगे चीज राले जा बांगजार यामा देने पोल गेने या इतो चीज रहते वन जंगल याल गे बाबा या
0: पिकनिक वन भोज बाक मे सचांसु छिनी मेले चाउसो सहयोग खेनाये वन जंगल ओसो छानी कैके बारी को चुरोद विधि ओरे बनाई
1: नान्थर नाम्रो लिजाउ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसर गिरुए
0: गेसो छानेला खोरेल चाउसी खोलिए हरिदे तरिन गाई गेज मेके लैजु अब नजिरे बनाई गेम येल गेज मेके नलाए अरूले लायो के लाइए
1: वन जंगल सजुलिसियो घेन बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा र सताउसो छिने ने चाउसो सहिरेकी खेले यहाँ
0: वन जंगल मेला जुगेमाइए ला दिकिनि पार जना खर्ना नार मिदि दे बनाई चानो ज मे गेस रे
1: बतास उचली जु बेला को गिजिन के कोटल ने के सताकि ने हेनो के म छिनि ने चास गेस रे
0: ने लागि ने निताई के मने के बचिए सोनो अरुले मने के बच या
1: के छ छामला पोया ल ने लागि के सन्ति ने जे छ का ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका उमि कार्यालय ल खबर दिलिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा